आपके चलता फीजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें. दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के 704 एपिसोड में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 एफएम और वी आर सिचुएटेड इन प्लेन्स मीडिया स्टूडियो इन मद्रास स्ट्रीट. जी हाँ, जिस तरह एवरी वीक हम आ जाते हैं आपके साथ में, सरडे है, आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हो. और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास एक गेस्ट है जो जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और वो है मोनिल जी, जिसको काफ़ी बार आपने अपने जलसा पे देखा होगा.

और साथ साथ में अर्चना जी भी हमारे साथ में शामिल हो चुकी है। और आज का जो विषय रहेगा जिस पे हम चर्चा करेंगे, फिजी गिरमिट कैंटरबरी जो दिवस मनाई जा रहे हैं, दिस इज द 147th गिरमिट जो रिमेम्बरेंस है और ये जो क्राइस्टचर्च में मनाई जा रही है, उसकी जो पूरी जानकारी आप इस एपिसोड